0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: A healthier India doesn't happen in a day.
2: It starts with the health choices that we make every day.
3: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
1: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
4: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
3: One informed choice और एक healthier action.
1: Giving better health in more hands. Every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
2: हेलो एंड वेलकम टू वॉचिंग प्राइम टाइम विद रेशा सेगर व्हाट कैन बी
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
3: I know the feeling of finding the middle of the bat. Now I'm chasing the cleanest swing and the perfect shot.
4: The sport may change. The champion's instinct doesn't.
5: It's not just about the game.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
1: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
2: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
3: Gold rush on the field.
0: Go for glory, only on NDTV.
4: I've spent a lifetime winning points with instinct, touch, and timing. The sport may change.
0: Welcome back. Let's get you the latest in regard to Telangana and the fresh political row that's erupted over the Chief Minister of the state, Revanth Reddy's remark when it came to Lord Ram and Lord Shiva. Revanth Reddy has taken a swipe at the BJP, saying that the party had stolen Lord Ram and claimed that the Congress leaders are devoted devotees of Lord Shiva. The Telangana Chief Minister also drew a contrast between the two gods, saying that Shiva is the god of the poor, while Ram is the god of the rich. He further alleged that the BJP represents the interests of the rich and compared the SR struggle to the slogan, Simon, go back. The BJP has strongly objected to those remarks, calling them offensive and accusing the Congress of disrespecting deities. The BJP said that Lord Ram and Lord Shiva cannot be divided into North and South and accusing the Congress of pushing a communal agenda. Let's just listen into what the BJP has to say on this matter. Sudhanshu Trivedi is speaking.
5: करते हुए वीडियो शायद आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा. यह है परम शिव भक्त का चोला और अंदर से मार्क्स और मैकाले बोला. अब दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि उन्हें कान खोल के सुनना चाहिए. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भारत के वैज्ञानिकों ने चांद के अछूते दक्षिणी ध्रुव को छुआ था तो उसका नाम उन्होंने पॉइंट शिव शक्ति रखा था. शिव और शक्ति दोनों का की स्थापना का घोष चांद की ऊंचाई तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है. और जब वो अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान से करने के बाद दूसरी विदेश यात्रा नेपाल में गए थे तो काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से निकलकर गले में रुद्राक्ष की माला के साथ त्रिपुंड लगाए हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो फोटो है, मुझे लगता है भारत के किसी प्रधानमंत्री की यह स्थिति नजर नहीं आई होगी. इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड श्री रेवंत रेड्डी दैट द इन द दो भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी रिस्पेक्टेड एंड रिवर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर इंडिया. But Andhra in Telangana is considered to be the place of Bhagwan Venkatesh. And in Bhagwan Venkatesh temple, every day Sri Ram Darbar is being worshipped. And it is called Sri Raghunath Parivaram. And I would like to ask Sri Revanth Reddy and all other Congress leaders, there is a very famous phrase which is used that Bhagwan Venkatesh is considered to be the family of Bhagwan Ram. And the name Venkat Raman is very much used in the entire southern India. But unfortunately, those whose whole sole agenda is to divide India, Britishers use the concept of divide and rule. But Congress concept is different. Divide the Hindus for the rule of the Muslims. Divide Hindus for the Muslim rule. And that's why Rahul Gandhi has categorically and deliberately has chosen a constituency which is having a Muslim majority. And in this context, I would like to say that if they want to divide the gods of Hindu society, I think the Semitic thought process have engraved their mind in such a way. It is the Semitic process ki ek bhagwan ko manenge dusre ko nahi. Agar aap masjid mein jayenge to church mein nahi ja sakte aur church mein jayenge to masjid mein nahi ja sakte. Magar hamare yahan koi samasya nahi hai. आप मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, बौद्ध विहार में जाइए, जैन विहार में जाइए, दरगाह पे भी चले जाते हैं और चर्च में भी चले जाते हैं, तो हिंदू धर्म से बाहर नहीं होते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के ऊपर लगता है इस्लामिक प्रभाव मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते चलाते इस सीमा तक पैबस्त हो गया है कि वो अब हिंदू धर्म के भगवानों को भी सीमेटिक धर्मों यानी इस्लामिक और क्रिश्चियन नजरिए से देखने लगे। और अब मैं इस विषय का शास्त्रीय जवाब देता हूं, क्योंकि देखिए कांग्रेस के एक बार राहुल गांधी बोले जरूर थे कि मैं हिंदू धर्म के अध्ययन के लिए वेद पुराण उपनिषद पढ़ रहा हूं, उन्होंने पढ़े बढ़े तो कुछ होंगे नहीं, तो मतलब बिल्कुल पक्का ही पता है। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर जो हैं वो गरीबों के देवता हैं और भगवान राम अमीरों के देवता हैं, ऐसा विचित्र उदाहरण देने वाला विलक्षण बुद्धि बालक ही हो सकता है या अरब दिमागी नक्सल हो सकता है। अब मैं बताना चाहता हूं, कुबेर हमारे यहां धन के अधिपति देवता हैं और शिव महापुराण में भगवान शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कुबेर मेरे पुत्र के समान है। अब बताओ भाई, अब आइए भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक ही व्यक्ति है जिसकी पूरी नगरी सोने की थी, वो था रावण, सोने की लंका। और अगर शिव तांडव स्त्रोत आप सुनते हो तो उसके अंतिम छंद में कहा गया है कि जो इसका नित्य प्रति भजन करता है, वो रावण रचित शिव तांडव स्त्रोत है, उसमें कहते भगवान शिव इसको हाथी घोड़ों से मणिभूषणों से युक्त निरंतर रहने वाली संपत्ति देते हैं। और भगवान राम के भक्त कौन है? हनुमान जी, वनवासी, गिरिवासी, ठीक, जामवंत जी, माता शबरी, निषाद राजगुह। इसीलिए हम, और यहां पर एक और बात कहना चाहता हूं, संपूर्ण रामचरितमानस भगवान शंकर पार्वती जी को सुनाते हैं और भगवान शंकर स्वयं अपने मुंह से बोलते हैं, श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान ने, यानी सहस्र विष्णु के नाम लेने के बाद भी मैं भी राम का नाम का जप करता हूं। ये कौन कह रहा? भगवान शंकर। और सहस्र विष्णु का नाम लेने से जो फल मिलता है वो एक राम का नाम लेने को मिलता है। और भगवान राम क्या कह रहे हैं? जब लंका पर विजय प्राप्त करनी है तो इस रामेश्वरम का शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं रामस्य ईश्वर यह सह रामेश्वरम, जो भगवान राम का ईश्वर है वह रामेश्वरम है, नाम भी रामेश्वरम ही है। अर्थात यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग इसमें विभाजन की दृष्टि से देखते हैं उन्हें हिंदू धर्म का क ख ग भी नहीं पता है, या फिर वो उस विभाजनकारी मानसिकता के टूल बने हुए हैं। और फिर हां यह जरूर है, जो राम विरोधी होकर भगवान शिव को भजता है वो रावण जैसा ही होता है। और यह बात भी मैं सब प्रमाण कह रहा हूं, श्री रामचरितमानस में यह लिखा है कि भगवान राम और माता सीता कौन है, उनके लिए लिखा है सीता जी के लिए अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। यही अनादि शक्ति है जो भगवान शंकर के अर्धांग में सदैव विराजमान रहती हैं। और भगवान राम ने स्वयं बोला है, कांग्रेसियों को बुरा लगेगा जो मैंने बात बोली है, यदि राम के प्रति विरोध करके कोई भगवान शंकर का की भक्ति का दावा करता है तो वो उसी वृत्ति का प्रतीक होता है जिस वृत्ति के प्रतीक राक्षस होते हैं। इसका प्रमाण दे रहा हूं, भगवान राम रामचरितमानस में कहते हैं शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, ते नर करहीं कलप भर घोर नरक मावास। अर्थात यदि कोई शंकर जी को प्रिय कह के मेरे से द्रोह करता है और मेरे को प्रिय कह के भगवान शंकर से द्रोह करता है तो वो एक कल्प, वैसे इनकी तो कैलकुलेशन में तो 7000 साल पहले दुनिया बनी थी, 14000 साल पहले दुनिया बनी थी, वैसे कल्प 30 करोड़ साल से ऊपर का होता है, वो एक कल्प तक, ब्रह्मा जी के एक कल्प तक, वो तो कई ट्रिलियन ईयर्स का होता है, उससे भी ज्यादा, तब तक वो नरक में वास करते हैं। तो मुझे लगता है
0: Well, Sudhanshu Trivedi of the BJP speaking on the matter, and this is in regard to the comments that were made by Revanth Reddy, drawing parallels to Ravan and saying that, you know, people who talk in such a manner don't know ABC about religion, and that is what has been said by the BJP in this regard. With that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more on the other side. To stay with us.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening? How?
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5 weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
10: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
11: You watch us, viewer, you trust us, and now your vote can speak for what we mean to you. Vote for NDTV at the ITA Awards 2026. You've got that power. Your support has always been an important part of NDTV's journey. And at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism that you trust, the journalism that matters. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link, and cheer for NDTV.
12: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV. When it really matters.
0: A healthier India doesn't happen in a day.
13: It starts with the health choices that we make every day.
14: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
15: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
16: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
17: One informed choice और एक healthier action.
15: Giving better health in more hands every day.
12: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026. To decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026. A world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
18: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
19: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
20: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यू वॉच अस व्यूअर, यू ट्रस्ट अस एंड नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू। Vote for NDTV at the ITA Awards 2026. You've got that power. Your support has always been an important part of NDTV's journey. And at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism that you trust, the journalism that matters. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link, and cheer for NDTV.
3: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV, when it really matters.
4: Ongoing controversy against the Election Commission of India. What we have seen that from the streets of the national capital to the Supreme Court to the Parliament, what we have seen that the India Alliance members have been basically imposing and saying that there's involvement of Chief Election Commission, and that's why they have been demanding his resignation. Behind me, you can see this is one such poster at roundabout of the Tansen Mark, where what we are seeing that here it's written India Alliance ka doglapan, which simply means the hypocrisy of the India Alliance. And the another line which is written over there is Jeete to ECI ko tali and hare to ECI ko gali. So when they win, they praise Election Commission of India, and when they lose, they start basically criticizing the Election Commission of India. So posters like these have been found at multiple places, including Patel Chowk roundabout, including Rail Bhavan roundabout, including Limeridian roundabout, Mandi House roundabout. So these are the several locations where what we have seen that such kind of posters and hoardings have been put in place. Here you can see there's another poster where it's written Jeet ka sehra apne naam, hare to chunav aayog pe ilzam. So such kind of posters have been erected and posted, affixed over here, and right now you can see with the help of visuals that Rahul Gandhi's visual photo has also been put in place. So posters like these can also be seen. I would like to move a little bit forward on this very roundabout and show you the visual from here. So when they win, there's another poster which basically describes when they win and when they lose.
5: I think बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमको भी जाना था, उद्धव जी ने भी तैयारी की थी, लेकिन आपको मालूम है कि अभी दो दिन में ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे के लिए हमारा भी मुंबई में सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसकी तैयारी में हम जुटे हैं। दिल्ली में जाने आने में दो दिन लगते हैं। अभी 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है राज ठाकरे जी के साथ, बाद में हम तैयारी करेंगे मोर्चा और आंदोलन की। तो उद्धव जी, हम सभी लोग 3 बजे के बाद इंडिया ब्लॉक के बैठक में ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम उसमें सहभागी हो, मुंबई में भी है 2 अक्टूबर का, डेफिनेटली रहेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने हमेशा अभिजीत दिपके के आंदोलन को समर्थन दिया है।
6: कि इंडिया गठबंधन का इससे पहले भी ममता बनर्जी बहुत बार घुसे हैं, बहुत बार उससे निकल भी आए हैं, कभी बैठक गए हैं, कभी बैठक से बाहर गए नहीं, भाग के चले हैं। तो उनको ऐसे हाइड एंड सीक चल रहा है, अब क्या होगा उसमें, डूबने वाला है इंडिया गठबंधन। तो एक आदमी लेके डूबेगा, राहुल जी पहले लेके डूब रहे थे, अब ममता बनर्जी राहुल सब मिलके डूबेंगे।
7: मैं कहता हूँ सपा सांपनाथ, बसपा नागनाथ, कांग्रेस कालियानाग, ये तीनों पार्टियां बैठक में जाएं या ना जाएं, तीनों भाजपा की विरोधी पार्टियां, ये तीनों एक साथ मिलकर के लड़ेंगे 2027 का चुनाव, तब भी हारेंगे, अलग अलग लड़ेंगे तब भी हारेंगे, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। इसलिए ये किस बैठक में जा रहे हैं, किस बैठक में नहीं जा रहे, इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं।
8: सी वी आर टुगेदर, आइडियोलॉजिकली वी स्टैंड विद द सिंगल, वी ऑल स्टैंड टुगेदर, मे बी वी आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस, दैट इज डिफरेंट, बट इन द पार्लियामेंट वी विल अपोज, वी विल सपोर्ट हूएवर बीइंग्स।

0: 45 दिन का कर दिया जाता है, पहले एक साल हुआ करता था। तो एविडेंस को मिटाना, और आप देखिएगा जब पोल होता है तो पोल जब खत्म होता है उस समय परसेंटेज कुछ और बताते हैं, अगले दिन कुछ और बताते हैं, तीसरे दिन कुछ और बताते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से ये बढ़ाते हैं। तो पहले से ही हम लोग ये बात को बोलते रहे
1: कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो ऐसे में विचलित होकर के टारगेट तो हमारे नेता को करेंगे, हम उससे विचलित नहीं होते, और उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम जो कहते हैं तथ्यों के साथ कहते हैं, मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं, चाहे उपचुनाव में हो चाहे जनरल चुनाव में हो, एसी की हमारे पास सारी डिटेल है कहाँ क्या हुआ। आपको पता नहीं उपचुनाव में चाहे मिल्कीपुर हो चाहे रामपुर हो चाहे आपका मीरापुर हो, सबको फर्जी लाल कार्ड दे दिए थे, वोट पुलिस वाले डाल देते, बंदूक लेकर के गन उसके हाथ में थी, पिस्टल या जो भी कुछ रहा होगा, और वो औरतों के खिलाफ जो वोट डालने जा रही थी उन्हें धमका करके भगा रहा था कि आप चले।
2: वी वॉन्ट ज्ञानेश कुमार टू बी रिमूव्ड, दैट इन दैट वे वी एज कांग्रेस एंड डीएमके आर इन द सेम लाइन्स, बट दैट डजंट मीन दैट वी आर पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिया ब्लॉक। So there are other parties also who are skipping the meeting, like Aam Aadmi and or Uttar Pradesh party. So the subject is we are all together in this subject. So if the matter comes to the parliament, we will support.
3: मैं कहता हूँ सपा सांपनाथ, बसपा नागनाथ, कांग्रेस कालियानाग, ये तीनों पार्टियां बैठक में जाएं या ना जाएं, तीनों भाजपा की विरोधी पार्टियां, ये तीनों एक साथ मिलकर के लड़ेंगे 2027 का चुनाव, तब भी हारेंगे, अलग अलग लड़ेंगे तब भी हारेंगे, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। इसलिए ये किस बैठक में जा रहे हैं किस बैठक में नहीं जा रहे इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं।
4: Vasudha still here with us on Breaking Ground to decode what the meeting today is all about. Vasudha, we've seen the resolution passed by the CWC yesterday. We're expecting something on similar lines at the India Bloc meeting today. And then you're going to see a game plan by the opposition leaders on the streets of the country and later in Parliament. Is that a part of the strategy against the CEC at this point?
5: I think they're also looking at legal options, and I'm told that a prominent section of the Congress party doesn't want Rahul Gandhi to approach the Supreme Court specifically with regard to what happened recently, this alleged discord between election commissioners, because they feel the case will end up the Rafal way. So they want to actually create public momentum, and they want to mobilize people on that count, which is why they want every other party to be on board. And when I spoke to other parties except TMC and a few others, there is a certain amount of reluctance in targeting specifically Gyanesh Kumar, and there are people within the Congress party also who feel this way, because they feel that it is the cancellation of voters which is a problem and not really the chief election commissioner. They feel whoever comes in his place would also probably do the same thing. So they want the SIR process to be far more transparent, and they want more accountable and transparent answers to the removal of 13 crore voters. Many of them are actually dead or duplicate, or voters who have been shifted or absent. And there have been other cases like in Goa and in Belaya state, which the election commission has already addressed. So I think the challenge
4: before the opposition is also... What is next, Panja?
5: I think for the opposition, the biggest challenge is also to create a sense of, to create public mobilization on this count, because with regard to NEET, it was easier. It was something that affected people. But with regard to SIR, you've not really seen large scale people come out and protest and alleging vote chori on that count. So I think for the opposition to make this an issue that resonates with people and also brings together parties on the same page is going to be the next big challenge.
4: Stay with me. Very quickly, we're going to bring to our viewers and then go back to Vasudha on Congress's six key demands. The first, the pre-SIR electoral roll to be used for future elections is what they're saying. They want complete transparency in

0: exclusion, voting through ballots instead of EVMs, and institutional accountability. Mamata Banerjee, Supriya Sule, Mehbooba Mufti, Umar Abdullah attending the meet along with Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. The opposition leaders have slammed the CEC, Gyanesh Kumar, highlighting the entire SIR exercise. Mamata Banerjee, as you just heard from Tejshree, has said it was carried out in a botched up manner. Also, left parties, we're being told, will be pressuring the Congress to open talks with the DMK, whereas the DMK has made it clear that they are not part of the India bloc, but they will support the issue if it comes to Parliament. The BJP has, of course, slammed the Congress over the absence of some key leaders from the allies and the partners of this alliance and said that India bloc is in shambles.
1: The Election Commission is totally wrong. The SIR process has been doubted by the two election commissioners, and they have pointed out that there were 14 disagreements between the election commissioners and the chief election commissioner. Too many mistakes have been pointed out in the past in Madhavpura in Karnataka, Anand in Maharashtra, in Haryana, in Maharashtra. Too many mistakes have been pointed out in the past. The SIR process is deeply flawed. If it was not flawed, why should the Election Commission meet again day before yesterday and change the process?
2: सबसे खुलासा हुआ है दो इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाए हैं उसको लेकर के ये बैठक है आप देखिएगा जितने भी चुनाव हुए हैं ये सब फर्जीवाड़ा हुआ है और इलेक्शन कमिश्नर को बचाने के लिए ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए पहले कानून बदल दिए जाते हैं पहले चयन प्रक्रिया जो होती है चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया जाता है उसके बाद जो है जो वोटिंग का जो रिकॉर्ड रखना चाहिए जो कि 45 दिन का कर दिया जाता है पहले एक साल हुआ करता था तो एविडेंस को मिटाना और आप देखिएगा जब पोल होता है तो पोल जब ख़त्म होता है उस समय परसेंटेज कुछ और बताते हैं अगले दिन कुछ और बताते हैं तीसरे दिन कुछ और बताते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से ये बढ़ाते हैं तो पहले से ही हम लोग ये बात को बोलते रहे
3: कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हो रहा तो ऐसे में विचलित होकर के टारगेट तो हमारे नेता को करेंगे हम उससे विचलित नहीं होते और उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम जो कहते हैं तथ्यों के साथ कहते हैं मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं चाहे उपचुनाव में हो चाहे जनरल चुनाव में हो बाइल एसी की हमारे पास सारी डिटेल है कहाँ क्या हुआ आपको पता नहीं उपचुनाव में चाहे मिल्कीपुर हो चाहे रामपुर हो चाहे आपका मीरापुर हो सबको फर्जी लाल कार्ड दे दिए थे वोट पुलिस वाले भी डाल देते बंदूक लेकर के गन उसके हाथ में थी पिस्टल या जो भी कुछ रहा होगा और वो औरतों के खिलाफ जो वोट डालने जा रही थी उन्हें धमका करके भगा रहा था कि आप चले
4: वी वांट ज्ञानेश कुमार टू बी रिमूव्ड दैट इन दैट वे वी एज कांग्रेस एंड डीएमके आर इन द सेम लाइंस बट दैट डजंट मीन दैट वी आर पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिया ब्लॉक सो देर आर अदर पार्टीज ऑल्सो हु आर स्किपिंग द मीटिंग लाइक आम आदमी एंड और उत्तर प्रदेश पार्टी सो द सब्जेक्ट इज we are all together in this subject. So, if the matter comes to the parliament, we will support.
5: मैं कहता हूँ सपा सांपनाथ बसपा नागनाथ कांग्रेस कालियानाथ ये तीनों पार्टियां बैठक में जाएं या ना जाएं तीनों भाजपा की विरोधी पार्टियां ये तीनों एक साथ मिलकर के लड़ेंगे 2027 का चुनाव तब भी हारेंगे अलग अलग लड़ेंगे तब भी हारेंगे तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी इसलिए ये किस बैठक में जा रहे हैं किस बैठक में नहीं जा रहे इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं
0: The Election Commission is pushing back against the criticism over SIR process and Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. The ECI has announced that Form 6 remains unchanged. The declaration form has been integrated into the Form 6 process to simplify the procedure and avoid a separate process. Sources say the criticism is targeted and unwarranted, pointing out that SIR is a lawful electoral roll.

0: तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जो जुबली हिल के चुनाव में कांग्रेस के दिल का उद्घोष कर चुके हैं, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, यही रेड्डी साहब बोले थे बिहार का डीएनए और तेलंगाना के डीएनए के बारे में। फिर उसके बाद भाषा पे विभाजित करना है, उसके बाद जाति में विभाजित करना है, और उसके बाद महिला और पुरुष में विभाजित करना है, स्मैश पैट्रियार्की सिर्फ हिंदू समाज के लिए। और जैसे ही केरल का ग्रैंड मुफ्ती बोल देता है कि महिलाओं को तो तिजोरी में नेकलेस की तरह रखना चाहिए, तो स्मैश पैट्रियार्की पे दहाड़ने चिंगाड़ने वाले कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। अब भगवानों को विभाजित करने की सीमा तक आ गए हैं। मुझे लगता है यह भारत में राजनीति करने के सबसे निकृष्टतम उदाहरणों में से एक है। रेवंत रेड्डी जी को या उसे कहलवाया जा रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बाबा विश्वनाथ की धरती से सांसद एक नहीं अनेक बार उनके हर हर महादेव करते हुए वीडियो है, मगर राहुल गांधी जी का हर हर महादेव करते हुए वीडियो शायद आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। यह है परम शिव भक्त का चोला और अंदर से मास्क और मैकाली बोला। In the entire southern India. But unfortunately, whose whole sole agenda is to divide India, Britishers use the concept of divide and rule, but Congress concept is different. Divide the Hindus for the rule of the Muslims. Divide Hindus for the Muslim rule. And that's why Rahul Gandhi has categorically and deliberately has chosen a constituency which is having a Muslim majority.
1: And here's a controversial comment made by the Telangana Chief Minister Revanth Reddy.
2: बड़ा सिंपल है, हम द्रविड़ियंस है, यहाँ के आर्यन है, हम शिव जी के भक्त है या राम जी के भक्त है। तो राम जी को बीजेपी ने
3: कब्जे कर लिया,
2: चोरी किए। तो इट्स अ इमोशन, इट इज एन सेंटिमेंट। तो क्यों हरे हरे महादेव क्यों नहीं बोलते, मोदी जी जय श्री राम बोलते कभी भी? देखो बीजेपी वाले कोई भी मंच पे हरे हरे महादेव कभी बोला क्या? जय श्री राम ही कहता है। हम हरे हरे महादेव बोले तो उन लोगों को पसंद नहीं है। गरीब लोगों का भगवान है शिव जी, अमीर लोगों का भगवान है राम जी। तो बीजेपी तो अमीर पार्टी है, तो इट्स ए सिंपल फंडा।
1: A tattoo meant to be a birthday surprise has now become another chilling detail in the Ketan Agarwal murder investigation. The Pune realtor had reportedly tattooed his fiancée Sia Goyal's name on his back, a gift he planned to reveal on her birthday, which was on the 19th of June. But just a day before her birthday, Ketan was allegedly pushed to his death from Lohargarh Fort. The police charge sheet alleges a premeditated murder involving Sia, her alleged lover Chetan Chaudhary, and their friend Ritesh. Here's what the investigation is now revealing.
4: A surprise meant for a loved one. A name tattooed permanently on his back. Ketan Agarwal had reportedly planned to reveal it to his fiancée, Sia Goyal, on her birthday. But the surprise never came. On June 18, Ketan fell from Lohargarh Fort in Pune. The police charge sheet now alleges that he was pushed. According to police, Ketan and Sia reached Lohargarh Fort around 9 a.m. The charge sheet alleges that Ketan Chaudhary was already waiting there in disguise. Police say Sia signaled Chetan at the ticket counter. The alleged plan then moved into action. Police allege Sia took Ketan towards the western side of the fort near the gorge. And then, according to the charge sheet, Chetan allegedly pushed Ketan from behind. At the same time, police allege Sia kicked him hard on the leg. Ketan lost his balance and fell into the gorge. But there was another person at the fort, an eyewitness who, according to police, saw the entire episode. The witness allegedly remained silent after being threatened. Chetan allegedly warned the witness, "Keep quiet or I'll throw you down from the fort too." The witness eventually approached the police after reports of Ketan's death began emerging. A statement was recorded. Police are now cross-checking that testimony with other evidence gathered during the investigation. A birthday surprise, a tattoo carrying his fiancée's name, and according to police charge sheet, a murder allegedly planned just a day before that birthday. Siya Goyal, Chetan Chaudhary and Ritesh Hinge have been arrested. The investigation continues. Bureau Report, NDTV.
1: So let me do a short break. On the other side, we return with international news, and a focus will be on Donald Trump's meeting with the AI company leaders and tech leaders at the White House. More on that, what was discussed, what are going to be the impacts of what was discussed, all of that moments from now.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Now over to my colleague Ashish from Hyderabad. He takes you through the developments there.
1: Thank you, Deepak. In fact, we are continuously reporting about the comment made by Chief Minister Revant Reddy in Delhi. He made the comment over North versus South debate, delimitation debate, and that led to a political controversy during that particular event in New Delhi. Chief Minister Revant Reddy, while participating in a media debate, in fact, he has said that Lord Ram is God of rich, while Lord Shiva is God of poor. He called himself a Dravidian, the southern states people, a Dravidian people, while he said that all those who are north of India, northern state people, are of Aryan race, and that also got and attracted sharp criticism of BJP. Now, BJP yet again has hit back on Revant Reddy. This time, Sidhanshu Trivedi, top BJP leader, he spoke against Revant Reddy and Congress Party in his media conference in New Delhi. Listening to what Sudhanshu Trivedi has to say over Revant Reddy's comment.
2: तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जो जुबली हिल के चुनाव में कांग्रेस के दिल का उद्घोष कर चुके हैं, कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, यही रेड्डी साहब बोले थे बिहार का डीएनए और तेलंगाना के डीएनए के बारे में। फिर उसके बाद भाषा पे विभाजित करना है, उसके बाद जाति में विभाजित करना है, और उसके बाद महिला और पुरुष में विभाजित करना है, स्मैश पैट्रियार्की सिर्फ हिंदू समाज के लिए। और जैसे ही केरल का ग्रैंड मुफ्ती बोल देता है कि महिलाओं को तो तिजोरी में नेकलेस की तरह रखना चाहिए, तो स्मैश पैट्रियार्की पे दहाड़ने चिंगाड़ने वाले कांग्रेस के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। अब भगवानों को विभाजित करने की सीमा तक आ गए हैं। मुझे लगता है यह भारत में राजनीति करने के सबसे निकृष्टतम उदाहरणों में से एक है।
1: Clearly, Sudhanshu Trivedi is alleging that Congress party, including Revant Reddy, he is appeasing one particular community. Muslim community, of course, is the he is hinting about. Listening to what Revant Reddy actually had said in that media conference in New Delhi.
3: Very simple. We are Dravidians, we are Aryans. We are Shiv Ji and Ram Ji. So, Ram Ji ko BJP ne
4: capture kar liya,
3: chori kiye. तो इट्स अ इमोशन, इट इज एन सेंटिमेंट। तो क्यों हरे हरे महादेव क्यों नहीं बोलते, मोदी जी जय श्री राम बोलते कभी भी? देखो बीजेपी वाले कोई भी मंच पे हरे हरे महादेव कभी बोला क्या? जय श्री राम ही कहता है। हम हरे हरे महादेव बोले तो उन लोगों को पसंद नहीं है। गरीब लोगों का भगवान है शिव जी, अमीर लोगों का भगवान है राम जी। तो बीजेपी तो अमीर पार्टी है। So it's a simple funda.
1: So clearly this is not dying, this politics over Revant Reddy comment is not dying. In fact, Chief Minister is today in Srisila, and we expect that he will further react over this controversy. Meanwhile, we'll go to Kerala, where my colleague Ashwin will tell you stories related to Kerala.
5: Well, thank you, Ashish. The story from Kerala, one thing that has come to fore is the Congress District Committee office in Thiruvananthapuram was attacked. And in fact, stones were hurled at this office at multiple locations. Now, interestingly, this incident has happened late night, somewhere after midnight. And this happened right in the middle of the city, just adjacent to the Reserve Bank of India office, where the District Congress Committee office is there. The stone has been hurled and an investigation is going on in this matter. Meanwhile, multiple CCTV footages, in fact, the CCTV cameras, which are installed at the premises by the Congress party, none of them seems to be working. But at the same time, Congress has come forward to allege that the BJP is behind this heinous act. In fact, a large number of Congress workers had gathered while the investigation had begun today early morning when they found out that this attack has happened in this office. Stones were hurled, a forensic team had come police has registered a complaint and an investigation had begun. In this stage, a large number of Congress workers had come over there, and they are also stating that the BJP is behind it. This comes in the backdrop of various interesting problems that is happening between the Congress and BJP ever since black flag was shown while Amit Shah was in Kerala, in Kollam, and he had come to the state and by the Congress, Youth Congress, and after which there has been a tension between the BJP and Congress. Now the Congress alleging that BJP is behind it. Let's hear the voices from the Congress party with regard to this. We have Matthew Kurilnadan MLA with us. Let's hear from him. Who do you suspect is behind this kind of heinous attack against the DCC?
6: It's very disgusting and unfortunate that such an attack is carried out in the late midnight hours on a party office, DCC office. This is not part of political culture in Kerala. So now what we suspect that this BJP goons who are carried out this mischief, and police is investigating the same, and they will book those who have done the mischief under law. That's what we expected.
5: And secondly, we are getting reports that none of these CCTV cameras are working. So is there some kind of a flaw? Is that a reason?
6: No, that we need to check. I mean, I just had a word with the police authorities. They said they are trying to gather evidence from across. Some of the CCTV cameras were not working, but other CCTV cameras were working. So, and they are looking at and they are investigating.
7: This is saying, jal se jal usko niptaye aur logon ko nyay mile. Ye hamara 6 muddon ka ek humne sabhi milke tay kiya hai. Main aapke samne rakh raha hu. Isiliye isse zyada kuch nahi bolna chahta. Aapko dhanyawad. Thank you sabko. सवाल क्या है यही सब यस यस यस ये मुद्दा देखिए ये देखिए सभी सहमत है उसमें कोई दो राय नहीं है ऐसा यार देखो देखो आपने पहले पूछा ईवीएम के जगह पे बैलेट पेपर का 100% सभी इंडिया अलायंस के लोग माने हैं और मानने का तो नहीं सभी ने फोर्स किया है और ये हम चाहते हैं हर इलेक्शन बैलेट पेपर में ही हो और ये अब चोरी की सरकार बैठी है ना ये चोरी की सरकार जो जो कानून किए हैं वो कानून भी रद्द करना चाहिए अगर वो रद्द नहीं करेंगे जब हम आइंदा आएंगे वो पूरे रद्द कर देंगे
8: साथियों अभी सवाल नहीं अभी प्रक्रिया चलने दीजिए प्रेस वार्ता की इस सिलसिले में अब ममता बनर्जी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो बात
9: हमारा इंडियन अलायंस जो है एक कट है एक साथ में है एंड वी आर वेरी मच टुगेदर आज जो बिग स्कैम हुआ है इट्स अ स्कैंडलस मैटर एंड इसके लिए जनभोग रहा है जो वोट चोरी का बात बिहार में कह गया था राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने जो वोट चोरी करके बीजेपी 26 में जीता मध्य प्रदेश में जीता हरियाणा में जीता बिहार में जीता बंगाल में लूट किया पूरा आपका पता है हम लोगों को लेके आया था इधर में इलेक्शन कमीशन के पास में गया था सुप्रीम कोर्ट में भी गया था सब दर्जा खटखटाया लेकिन अभी तो खुला हो गया कि भैनिस कुमार चोर है डक्कू है वोट चोरी किया ईवीएम मशीन जला दिया ईवीएम मशीन हाईजैकिंग किया काउंटिंग रिगिंग किया क्या नहीं किया है इसके लिए ही मस्ट रिजाइन इमीडिएटली Let us save the democracy and let the security of the people, the voting rights, it is our constitutional rights, it is our obligation to the people. If people are not voting, if their voting are being lied and cheated, then where the country will go? So our request, it is not request, our demand. और फोर्सफुल डिमांड धैनिश कुमार अगर नहीं रिमूव होगा तो ये आंदोलन बहुत देर दूर पहुंच जा सकता है, मिट्टी से आसमान तक जाएगा, चांद सूरज तक जाएगा। ये हम लोगों को एक साथ में लड़के देखना है। वोट लूट किया ना, चोरी किया, क्यों मशीन जलाया, ईवीएम मशीन क्यों जलाया, क्यों ओ शिवा खन्ना कौन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर कहां से ले आया, एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसको देके पूरा लूट कर लिया। हमारा बंगाल में खाली 92 लाख लूट किया, पूरा हिंदुस्तान में 13 करोड़ से ज्यादा लूट किया और उन्होंने सॉफ्टवेयर बना के ईआरओ को पूरा डेडलॉक कर दिया, पूरा सिस्टम को खतरा कर दिया। इसको रहने का एक मिनट भी जरूरत नहीं है, अभी से अभी इसको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो हम जनता को भी विनती करते हैं, जो प्रोग्राम लिया है इंडियन अलायंस में खड़गे जी बताया उसमें हम लोग सब शामिल होंगे। हम लोगों को तो घर से निकालने नहीं देता है, हम देखते हैं, हम लोग को निकालने नहीं देंगे, लेकिन ये लोग कहां जाएंगे। हम राहुल जी को, हम खड़गे जी को बोलेंगे, हम और ज्यादा बोलने नहीं चाहते, लेकिन हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लोकतंत्र वापस आएंगे और डेमोक्रेसी आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रक्षा करेंगे, ये हमारा वादा है। इसके लिए जान अगर खतरे में जाएगा, वी आर रेडी टू डू इट। ओनली वी वॉन्ट योर सपोर्ट, ऑल द एनजीओस, द स्टूडेंट्स, द यूथ, द महिला, द गर्ल चाइल्ड, माई जर्नलिस्ट फ्रेंड्स, ऑल वी वॉन्ट योर सपोर्ट। थैंक यू,
7: थैंक यू। दो मिनट राहुल जी, नहीं मैंने बोला, आपका बोलना, आप एलओपी है, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ, तो आपका बोलना अलग है, मेरा बोलना अलग है। आखिरी बस इसके बाद खत्म करेंगे, आप बोलिए प्लीज।
10: थैंक यू खारगे जी, नहीं काफी अच्छी चर्चा हुई। मेन इशू वोट की जो चोरी हुई है, सब पार्टीज का ओपिनियन है कि हिंदुस्तान का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उस पर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार जी ने आक्रमण किया है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। वी आर गोइंग टू इंश्योर, दिस इज पर्सनल कमिटमेंट ऑफ ऑल इंडिया लीडर्स, we are going to ensure that the people who have destroyed Indian democracy are punished. Doesn't matter how senior they are, who they are, Indian democracy is bigger than every single person in this country. So this is the discussion that was held. There was also a feeling in the room that the opposition has been quite successful in putting across to the people of India that elections are stolen, that Narendra Modi, Amit Shah have destroyed democracy, and there is a new sense of resistance, particularly among young people, that what is going on in India is wrong and needs to be stopped. Again, I also mentioned to all the opposition leaders that they are the collective defenders of the Indian Constitution, and it is an honor for us to work together, and we are confident that over the next few months we will make serious changes in the country. Thank you.
8: No questions, please. Dhanyavaad. Thank you very much. Thank you.
11: Great.
12: Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge and Mamata Banerjee there speaking at the press conference following that meeting that's taken place of the India bloc in regard to the demand that's being made by the opposition, and that is the resignation of the CEC and the SR exercise. Rahul Gandhi is saying that he will be reviving democracy, and this is the revival that is what they're fighting for. Rahul Gandhi says the Prime Minister, the Home Minister, in fact, attacking both of them, and that the opposition will work together, hitting out at Ganesh Kumar and the BJP post that meeting that has taken place, attacking not just the Home Minister and the CEC, but also the Prime Minister, saying that we will be reviving the Indian democracy and the system. And that is something that Rahul Gandhi spoke of. Mallikarjun Kharge has, in fact, accused the BJP and Mamata Banerjee. They're saying that we are all united in this front when it comes to the demands that are being made by the opposition. This after Mr. Sandhu and Mr. Joshi have raised concerns in regard to Form 6 and other issues when it comes to the SIR process. So the India bloc leaders that held that very key meeting in Delhi over SIR and the row with the CEC. This is the row that has been escalated ever since those discrepancies and those objections that were raised by Mr. Sandhu and Mr. Joshi. The Congress has put forward 6 demands in the meeting, including the pre-SIR electoral roll to be used for future elections, protection of eligible voters from exclusion, voting through ballots instead of EVMs and institutional accountability. Mamata Banerjee, Supriya Sule, Mehbooba Mufti, Omar Abdullah all were there in attendance at that very crucial meeting that's taken place in the Constitution Club here in the National Capital. Of course, the top brass of the Congress Party was the one that held this meeting that included Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. We just heard Mallikarjun Kharge hitting out at the central government in regard to the SIR exercise, something that they've been bringing up time and again. Rahul Gandhi again using the vote chori jibe against the central government, and it is the opposition leaders that have gone ahead and slammed the CEC, the Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, highlighting the entire exercise when it comes to SIR. Mamata Banerjee has said that it was carried out in a very botched up way, in a very botched up manner. Meanwhile, left parties are to pressure the Congress to open talks with DMK, whereas DMK has made it very clear that they are not ready to participate as far as the India bloc is concerned, but they're supporting the issue if it comes in Parliament. So the impeachment is something that they're vying for. Janendra, my colleague, joining us in order to get us details. Janendra, while the BJP has been slamming the Congress over the absence of its allies, saying that it's not very united in its front when it comes to this, but of course, we just heard Mamata Banerjee there saying, we're all united, we all want the same thing. Talk us through the details. Key takeaways.
11: So unity is very evident. Talk about India Alliance, especially on this issue. And just now, a 3-hour meeting has been concluded. And after the meeting, Congress President Mallikarjun Kharge announced the future course of action on the Ganesh Kumar issue. And he announced that from 2nd of October to 8th October, that means in the first week of October, district-wise march will be and procession will be held by India by the India Alliance party leaders and workers on 6th October. India Alliance MPs, all opposition MPs, will march towards the Election Commission.
12: And let's just cut across to the Home Minister. Let's listen in to what Amit Shah has to say.
13: Sardar Teja Singh Samundari aur Shahid Bhagat Singh aur Udham Singh ki jodi, ye sabhi ko main pranam karkar meri baat ki shuruaat karna chahta hoon. Mitro, Punjab desh mein do cheezon ke liye बहुत अच्छे से जाना जाता था. एक, देश में जब भी खाने पीने की चीजों की जरूरत पड़ती थी, हमारे कोठारों को, गोदामों को पंजाब का किसान भर कर देता था. पंजाब का किसान आज भी भर कर देता है. और दूसरा, आजादी के पहले का समय हो या आजादी के बाद का, जब भी देश की सुरक्षा की समस्या आती थी, मेरे पंजाब का जवान मां भारती के लिए अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता था. पंजाबियों के बलिदान से न केवल हमें आजादी मिली, आजादी के बाद भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए कोई एक सूबे ने अगर सबसे ज्यादा बलिदान दिया है तो मेरे पंजाब के सूबे ने दिया है. पंजाब के सूबे, मैं पंजाब की वो वीर माताओं को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज नशा मुक्त पंजाब बनाने का समय क्यों आया? ये आप पार्टी की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया। मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, पंजाब के चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, इंडस्ट्री के मुद्दे हैं, कानून और व्यवस्था के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, मगर आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ने वाली है, नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे। और आज यहां से मैं पंजाब की माताओं को और पंजाब के युवा को वादा कर जाता हूं, इस चुनाव में भाजपा का समर्थन करिए, कमल फूल पर वोट डालिए। 31 दिसंबर 2029 से पहले हम पंजाब को चट्टे के व्यापार से मुक्त कर देंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पठानकोट से यात्रा शुरू की। 13 दिन 4000 किलोमीटर 117 विधानसभाएं घूमकर आज वो यात्रा यहां समाप्त हो रही है। और मित्रों, जब मैं कहता हूं कि हम 31 दिसंबर 2029 को पंजाब को चट्टा मुक्त कर देंगे, मुझे मालूम है एक केजरीवाल एंड कंपनी मेरे पीछे क्या कहने वाली है। मैं पंजाब की जनता को बताना चाहता हूं, हमने जो कहा है वो कर दिखाया है। कश्मीर को आतंकवाद मुक्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। 50 साल पुरानी नक्सल समस्या को तिथि देकर समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। और नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद को भी समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने करा। और अब बारी है चट्टा मुक्त पंजाब की। मैं फिर से एक बार पंजाब के युवाओं को और विशेषकर माताओं को कहने आया हूं, 31 दिसंबर 2029 के बाद आपके बच्चों को चट्टा उपलब्ध करने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, जो पंजाब पूरे देश के लिए धान और गेहूं पकाता था, देश की सुरक्षा करता था, वहां पर मावा मांग दिया जवाब, माताएं ऐसी रैलियां निकालती हैं। मैं अभी नशे की लत के कारण जिन्होंने जान गंवाई है, ऐसे परिवार को मिलकर आया हूं। एक मां अपने दो युवा बेटों की तस्वीर गोद में रहकर कहती है इसको बंद कराओ, मेरे तो नहीं बचे, दूसरे के लाल को बचा लो, और इनको शर्म नहीं आती। जो नशे में धूत होकर खुद गुरुओं का अपमान ना करे वो चट्टे से पंजाब को मुक्त नहीं कर सकता है, पंजाब को मुक्त नहीं कर सकता है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये आप पार्टी पंजाब को नशा मुक्त कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पंजाब को नशे से मुक्त कर सकती है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है देश भर में हमने नशा मुक्त भारत का अभियान चलाया। मैं आज कुछ आंकड़े कहने आया हूं, आज कुछ आंकड़े कहने आया हूं 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल में देश भर में 26 लाख किलो चट्टा पकड़ा गया, और मोदी जी की सरकार आई 14 से 24 में 26 लाख किलो की जगह 1,20,00,000 नशा पकड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कांग्रेस पार्टी ने 40,000 करोड़ के नशे का माल जब्त किया था, 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 40,000 करोड़ की जगह 1,90,000 करोड़ का माल जब्त, 5 गुना। अब जलंधर वाले पूछेंगे तो पंजाब में क्यों नहीं होता था, पंजाब में क्यों नहीं होता है? पंजाब में एक बार ये निकम्मी सरकार को हटा दो, 2 ही साल में चट्टे को हम समाप्त कर देंगे मित्रों, समाप्त कर देंगे। पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है, युवाओं को मौत के घाट उतारता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। मित्रों, आज पंजाब की आर्थिक व्यवस्था बड़ी बदहाल है, पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार का एक के बाद एक घपले हो रहे हैं, मोगा आउटडोर मीडिया विज्ञापन घोटाला, अमृतसर स्मार्ट सिटी घोटाला, जालंधर स्मार्ट सिटी घोटाला, बरनाला ट्रक यूनियन भूमि घोटाला, पंचायत फंड घोटाला, आंगेवाड़ी पोषण पंजीरी का घोटाला, हर महीने 40 करोड़ से ज्यादा उगाही का खर्चा और सालाना 785 करोड़ की विज्ञापनों का खर्चा। मैं आज भगवंत मान को पूछने आया हूं, भैया भगवंत मान आपके वादों का क्या हुआ? 25 लाख नई नौकरी देने वाले थे, 1,25,00,000 लोगों को खाली जगहों पे नियुक्त करने वाले थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 16,000 पिंड क्लिनिक स्थापित करने थे, केवल 1200 बनाए। विधवा पेंशन 2500 करने वाले थे, नहीं किया। 16 मेडिकल कॉलेज बनाने वाले थे, नहीं बनाया। खनन की आय सालाना 20,000 करोड़ बढ़ाने वाले थे और कम कर दी। सभी फसलों पर एमएसपी देने वाले थे, आपने तो नहीं दिया। हरियाणा ने सभी फसलों पर एमएसपी देने का काम पूरा कर दिया। और सिख विरोधी दंगों में 5 लाख की अतिरिक्त सहायता देनी थी, 5 रुपया भी नहीं दिया। और मैं आज भगवंत मान को बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, ये कुछ न करने के बावजूद अगर नशा मुक्त पंजाब बनाते तो पंजाब की जनता आपको माफ कर देती, मगर आपने तो नशा मुक्त पंजाब का वादा कर नशे के व्यापार को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी फिर से औद्योगिक क्षेत्र में पंजाब को 1 से 5 में लाने का वादा करती है। हम किसानों की समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे, हम पंजाब की वित्तीय हालत को ठीक भी करेंगे, युवाओं को रोजगारी देंगे। मगर ये किसी के लिए हमें वोट मत देना भाई, ये सभी चीजों का कोई उपयोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब ने वोट देना है केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के लिए वोट देना है। मुझे बताओ, जो दिल्ली में शराब बेचने के घोटाले में पकड़े गए हो, वो पंजाब को नशा मुक्त कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? उन पर भरोसा कर सकते हैं क्या? पंजाब का भविष्य पंजाब के युवाओं ने और माताओं ने बर्बाद नहीं होना दे। आपने सभी को देखा, कांग्रेस को देखा या नहीं देखा भाई? अरे जोर से बोलो, देखा या नहीं देखा? जोर से बोलो, देखा या नहीं देखा? आप पार्टी को देखा या नहीं देखा? बाकी सारों को देखा या नहीं देखा? अरे एक मौका 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी को दे दो, हम नशा मुक्त पंजाब बना कर देंगे। भाइयों बहनों, मैं यहां फौरी राजनीतिक भाषण करने के लिए नहीं आया। पंजाब वो सूबा है, मुगलों से लेकर आज तक देश की सुरक्षा पंजाब ने की। गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सर मुगलों के सामने कटवाकर देश भर के हिंदुओं को बचाने का काम किया। सरबंस स्थानी गुरु गोविंद सिंह जी ने, दसम पिता ने अपना पूरा परिवार मुगलों से देश की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। और आज भी जब बोले सो निहाल का नारा लगता है, पाकिस्तानी सेना उल्टे पैर भाग जाती है, भाग जाती है। और भाइयों बहनों, वो वीर भूमि पंजाब, वो किसानों की भूमि पंजाब, वो खिलाड़ियों की भूमि पंजाब, वो रंगीला पंजाब, आज इन्होंने चिट्टे के रंग से रंग दिया है। सिर्फ पंजाब नहीं, देश भर के लोग मानते हैं कि पंजाब नशा मुक्त होना चाहिए, मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं भाइयों बहनों, एक बार कमल के निशान पर बटन दबा दो, 31 दिसंबर 2029 को चट्टा बेचने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं। भाइयों बहनों, कुश्ती और कबड्डी खेलने वाले पंजाब का युवा जब बर्बाद होता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। हमने नशा मुक्त भारत का अभियान चलाया। मैं आज पूछने आया हूं मुख्यमंत्री पंजाब को, देश भर में 5000 से ज्यादा लोग एनडीपीएस में जेल में चले गए, जहां जब से ज्यादा नशा बिकता है वो पंजाब में, एक भी कार्यवाही इस साल में नहीं की है, एक को भी पीट एनडीपीएस में जेल में नहीं डाला। पीट एनडीपीएस वो कानून है जो मोदी जी ने बनाया है, जिसमें चट्टे के व्यापारी को बेल नहीं मिलती है, उसका कमाया हुआ सारा धन सरकार जब्त कर लेती है, मगर एक भी आदमी को पीट एनडीपीएस के तहत इन नशा का व्यापार करने वाली, बढ़ावा देने वाली आप पार्टी ने नहीं पकड़ा है। एनकोर बनाया, जहां मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया। मुझे बता दे भगवंत मान साहब कि एनकोर की कितनी मीटिंगें की, 3 साल से मैं हर एक राज्य में एनकोर की मीटिंगें करा रहा हूं, पंजाब ने 3 साल में एक भी मीटिंग नहीं करी है, एक भी मीटिंग नहीं। और भाइयों बहनों, हमने एनसीबी की ऑफिस खोलने की बात करी, भगवंत मान साहब ने फोन कर ना बोला। मैंने बोला मान साहब आप भले ना बोलो, हम ऑनलाइन खोलेंगे और चुनाव के काउंटिंग के बाद मैं दूसरे दिन आकर यहां चट्टा मुक्त पंजाब का अभियान शुरू करने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी ने यह अभियान जो उठाया है, हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है, यह अभियान पंजाब को बचाने का अभियान है। पंजाब में 1 ग्राम ड्रग हम बेचने भी नहीं देंगे और पंजाब से 1 ग्राम ड्रग भारत के दूसरे हिस्से में जाने भी नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी तभी कर सकती है, तब नशा मुक्त पंजाब में विश्वास करने वाली हमारी हर मां, हर बहन, हर बच्ची, उसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे। भारतीय जनता पार्टी ये तभी कर सकती है जब पंजाब का युवा, एक एक युवा एक मौका नरेंद्र मोदी को दो, ये कहकर चट्टा मुक्त अभियान का, पंजाब के अभियान का समर्थन करें। मैं जालंधर से बड़े मनपूर्वक पंजाब की माताओं को, बहनों को, बेटियों को कहने आया हूं, हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर दिखाया है। हमने कश्मीर में कर दिखाया है, हमने नॉर्थ ईस्ट में कर दिखाया है, हमने नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है, हमने आतंकवाद को समाप्त किया है। एक मौका दे दो, हम पंजाब से पंजाब में से चट्टे को समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अंत में मैं आम सभा, विशाल जनसभा के माध्यम से पंजाब भर के लोगों को अपील करने आया हूं कि हमें चट्टा मुक्त पंजाब बनाने का एक मौका दीजिए, यही हमारी विनती है। मेरे साथ जरा जोर से बोलेगा, बोले सोनिहाल, जय Shri Ram! Jai Jai Shri Ram! Bharat Mata Ki! Vande! Vande! आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल।
12: Home Minister Amit Shah there addressing a gathering in Jalandhar, sounding the poll bugle in Punjab, promising to make the state drug-free by 2029. Just give the BJP one chance is what the Home Minister said. He said no chitta will be there. That's how they refer the reference to drugs. No chitta in Punjab in 2029. He says under the Aam Aadmi Party government, they have absolutely failed on this front, saying that the leaders themselves are intoxicated. How will they make Punjab drug-free? He asked the people of the state to give BJP one chance, saying we've proven ourselves in Jammu and Kashmir. We have proven ourselves in the Northeast. Let's just listen into what he said.
13: 50 साल पुरानी नक्सल समस्या को तिथि देकर समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। और नॉर्थ ईस्ट के आतंकवाद को भी समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने करा। और अब बारी है चट्टा मुक्त पंजाब की। मैं फिर से एक बार पंजाब के युवाओं को और विशेषकर माताओं को कहने आया हूं, 31 दिसंबर 2029 के बाद आपके बच्चों को चट्टा उपलब्ध करने वाला कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जो नशे में धूत होकर खुद गुरुओं का ही अपमान ना करे, वो चट्टे से पंजाब को मुक्त नहीं कर सकता है, पंजाब को मुक्त नहीं कर सकता है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये आप पार्टी पंजाब को नशा मुक्त कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पंजाब को नशे से मुक्त कर सकती है। भाइयों बहनों, आज नशा मुक्त पंजाब बनाने का समय क्यों आया? ये आप पार्टी की सरकार ने चिट्टे के व्यापार को खुलेआम चलने दिया। मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, पंजाब के चुनाव में कई सारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, इंडस्ट्री के मुद्दे हैं, कानून और व्यवस्था के मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, मगर आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल नशा मुक्त पंजाब के मुद्दे पर लड़ने वाली है, नशा मुक्त पंजाब के।
12: All right, Home Minister Amit Shah sounding the poll bugle there in Punjab. But moving on now to breaking news on the Fly Dubai flight that landed, that saw an emergency landing in Saudi Arabia. We have visuals now. It's the first video from the Fly Dubai flight, which has created a huge controversy. Remember, initially it was thought that perhaps the plane was being hijacked. It had given out a distress signal. Later, it has now emerged that it was actually an altercation between two pilots. So take a look at this visual. This is the first video that has come from Fly Dubai. A lot of confusion over exactly what took place on this flight. It's a shocking story of an altercation between two pilots is what has now emerged, though more details are needed. This flight from Dubai to Tel Aviv was diverted to Saudi Arabia, and initially there was a distress signal that was triggered from the cockpit, which gave the impression
14: that gave the impression that perhaps the flight has been hijacked. Later it emerged that it was actually an altercation between two of the pilots. It was the passengers then who had to overtake, bring that pilot under control. Let's go across to Vishnu Shom now for more on what we know about what took place on Fly Dubai. Vishnu, this is a very startling story, very frightening as well. This is the first visual we have of the passengers clapping there on board the plane, perhaps is after it landed safely. But what do we know so far?
15: Well, Israel is looking at this as a terrorist incident. And what I can tell you is that on the basis of multiple reports we are getting from journalists in Israel, it appears that this was a terrorist incident.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे।
1: A quarter century of transformative leadership, from defining governance in Gujarat to steering India as a pivotal global power. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years of governance.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो द स्टोरीज दैट मैटर द स्टोरीज दैट शेप योर लाइफ
2: हेलो एंड वेलकम टू वॉचिंग प्राइम टाइम विद मी रेशा सहगल
1: The show that sets the prime time agenda.
2: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
1: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: all four ran an awesome race and made a country proud, our parents proud, our family proud, everyone proud. We are very happy.
1: No, and all of us are very happy for you. Never have truer words been spoken. Vithya, I want to ask you, you are coming back to India with all the colors. You're coming back with a bronze, you're coming back with a silver, you're also coming back with a gold. And if that wasn't enough, you also broke PT Usha Ma'am's 42-year-old record. Has the scale of your achievement sunk in yet? Do you believe what you've done?
2: Yes, I believed what I've done. It's because of all supported with us, like Athlete Federation of India, TOPS, our governments, everyone supported. I think that they were like a foreign exposure. Like we went to the Spala Olympic Sports Center. There was a good experience we did there. We see a lot of athletes, like world level athletes, we there. We trained with them. So then again, we went to Czech Republic. Then now we Asian Games before we came here for the one week camp, like Sukuba. It was so good. They all, with support of us, we did a great job here. Because of them, we couldn't do it anything. Even I don't believe that I break record also. Then it went to below 55 seconds. In my career, I did below 55 in the Asian Games. So I'm so happy. I'm so proud. I'm bringing 3 medals to our country.
1: Yeah, and we couldn't be more happier for you as well here. Kiran, aapse puchna chahunga, 2 saal mein Olympic Games hain. अब इतनी एक्सपेक्टेशंस आपकी इस पूरी टीम ने रेज कर दी हैं, तो अब सारा फोकस ओलंपिक गेम्स की तरफ शिफ्ट होगा क्या?
3: अभी ओलंपिक से पहले अभी नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जैसे कि सभी को पता है. हम अभी कुछ टाइम के लिए, हमें अभी छुट्टी मिलेगा मैक्सिमम 1 मंथ मुश्किल से. उसमें हम अपना इंजॉयमेंट करेंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा से तैयारी शुरू कर देंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए. और वर्ल्ड चैंपियनशिप में नेक्स्ट ईयर जैसे कि और भी काफ़ी कंपटीशन है, एशियन चैंपियनशिप है और रिलीज है, उसके लिए भी हम तैयारी करेंगे. फिर नेक्स्ट ईयर 2028 में ओलंपिक है, तो उसके लिए और अच्छा फाइट करेंगे.
1: चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक्स में भी एकदम ऐसा ही प्रदर्शन हो आपका. फाइनली, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. व्हाट वुड यू लाइक टू से टू यंग गर्ल्स हु सॉ यू विनिंग in Japan and are dreaming of becoming athletes in India? What is that message that you guys would like to give them?
0: Just keep working hard. Hard work, all that matters. And discipline, determination. So success and failure is part of life. Failure to dekhna hi padega, kyunki hamesha success to hota nahi hai. So if you taste the success, then failure, then only we'll know what success is. So there will be ups and downs, injuries, everything. We have to face it and we have to move forward. Keep working hard. And especially in my point of view, age is nothing. We can do no matter what age is. I have done it. Even you people can do it. And I wish all the youngsters more medals in future. Maybe one or the other time we have to get a country, and hope there will be many more medals at the Olympics in next Los Angeles.
1: Now, you guys also told me ki kal aap log wapas India aa rahe hain, to aapka swagat to hoga hi hoga. Aap logo ki taraf se kya plan hai? Prachi, thoda bataiye ki India pahunchne ke baad kya hoga, kya karna chahti hain aap, kya plan hai aapka?
4: हाँ, देखो, हमारे घर में तो पहले से प्लानिंग शुरू हो गई है.
1: थोड़ा हमें भी बताइए वो प्लानिंग का.
4: हाँ जी, उधर फुल मीडिया वगैरह सब आ गया है घर पे, और फुल जो हमारे एमपी एमएलए सब घर पे पहुंच गए ऑलरेडी मेरे आने से पहले. तो बस उनको ये है कि जल्दी से मैं एयरपोर्ट पहुंचूं, वो मुझे वहां से रिसीव करें. और मेरा प्लान है कि मैं सबसे पहले जाके अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाऊं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है घर का खाना खाए. तो मेरा तो बस यही प्लान है. उसके बाद बहुत सारे प्लान होंगे, वो अभी पता नहीं मुझे क्या क्या करना है.
1: चलिए, तो खाना जो आप खाएंगी उसी के बारे में थोड़ा बताइए. क्या खाने के लिए आप एकदम वेट कर रही हैं? क्या आपका फेवरेट है? क्या मम्मी बनाएंगी आपके लिए?
4: मेरी मम्मी चूरमा बनाती हैं. फिर मेरे को लस्सी बहुत पसंद है घर की, जो घर पे बनाते हैं. दूध पसंद है, तो वो सब चीज़, वो टेस्ट कहीं पे नहीं मिलता है, चाहे हम किधर भी चले जाएं. वो जो घर का टेस्ट है वो मम्मी के हाथ से ही बना हुआ मिलता है, तो ये सब चीज़ें मेरे को खानी है.
1: चलिए फैंटास्टिक. व्हाट अबाउट विथ्या यू एंड पुवामा, व्हाट अबाउट, व्हाट आर योर

0: plans once you guys land in Delhi?
1: I'm eagerly waiting to go back home. So once I'm back to Delhi, my husband will be there. So after that, then early next day, I'll be traveling to Bangalore, to my hometown. So my parents are waiting. I'm waiting for my niece. Like it's nearly 7 months. I have not seen them. I'm eagerly waiting for my niece especially. So everyone are waiting, all the media, everyone have reached my home there. My parents are very busy and they're very proud that I won medal. So even I am waiting, as Prachi said, even I am waiting ghar ka khana khane ke liye. Main bahut taras rahi hu kyunki hum log to Poland mein tha to South Indian food to kuch nahi milta tha. Kabhi kabhi hum log idhar udhar ke Indian restaurant mein mangwate the, lekin ghar ka khana to ghar ka hi khana hi hota hai. So sab kuch ek list hai, list rakha hai mujhe kya kya chahiye, bas jana hai, khana hai aur bas.
0: Home cooked food is the least that all of you deserve. Vithya, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपकी there are a few photos of yours, तीनों medal आपने लिए हुए हैं और आपके एकदम face के पास, those pictures are going absolutely viral all over the country. हर कोई देख रहा है उन photos को and they're getting inspired as well. थोड़ा बताइए वो कहाँ से idea मिला ऐसे photo खिंचाने का?
2: ऐसे नहीं था, और एक इधर देर उन फोटोग्राफर कम एंड टोल्ड यू हैव यू ब्रिंग एवरी मेडल्स. आई सेड यस सर, इट्स वाज इन माय बैग, व्हाई यू कीप इट इन बैग, टेक इट एंड पुट इट इन योर शोल्डर, देन शो इट टू आवर कंट्री विद प्राउड. सो आई डिड दैट, द कैमरामैन टीच मी द पोज, सो आई डिड इट. बट आई आफ्टर सीइंग द इंस्टाग्राम, इट्स वाज गोइंग सो लाइक्स, एवरी टाइम आई एम गेटिंग लाइक्स व्यूज, सो आई एम हैप्पी. आई एम सो हैप्पी दैट आई मेक 3 कलर्स ऑफ मेडल्स इन दिस एशियन गेम्स.
0: No, fantastic. और किरण, फाइनली आप बताइए, सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को लेके वेट कर रही हैं? सबने बताया कोई 7 महीने से घर नहीं गया है, somebody wants to eat the चूरमा मेड बाय their मॉम. What are you most looking forward to? आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वेट कर रही हैं?
3: मुझे खाने का इतना नहीं है सर, अभी बताया नहीं है, मेरे घर पे एक छोटा सा बच्चा आया है. मेरे भाई को बेबी हुआ है, मतलब तो मैं उसको लेके ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. अभी बस फोटो ही देखा है, मैं सबसे पहले उसको अपने हाथ में लेना चाहती हूँ, उसका मुझे ज़्यादा खुशी होगा सर. खाने का तो मैं बाद में देखूंगी.
0: अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस टू यू किरण एंड टू योर ब्रदर, एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल 4 ऑफ यू फॉर मेकिंग द कंट्री प्राउड, फॉर विनिंग अ गोल्ड मेडल, फॉर यू नो शोइंग द पाथ for a lot of young girls who want to take up athletics, want to take up sports, that if you put your mind to it, if you put in the hard work, anything is possible. You guys have done it, and we wish you all the success in the future as well. Thank you so much for joining NDT.
1: Thank you, sir. Thank you.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link, and cheer for NDTV.
1: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/NDTV. Vote for the channel you trust. NDTV, when it really matters.
2: A healthier India doesn't happen in a day.
3: Welcome back. You're watching NDTV Newsroom. Now, Minister Shivraj Singh Chauhan has hit out at the India Bloc opposition leaders and at Rahul Gandhi. Remember, the India Bloc met today. They hit out at the Chief Election Commissioner with Rahul Gandhi, even saying that Gyanesh Kumar works for the BJP, works for Prime Minister Modi. Now, Shivraj Singh Chauhan has countered this and said instead of apologizing for their mistakes, the leader of opposition is spreading lies and making allegations.
4: एंटी इनकम्बेंसी की बात करती है कांग्रेस, इंडी गठबंधन में ही एंटी आईएनसी है, एंटी इनका, इनके इरादे कभी सफल नहीं होंगे। हार की हताशा, अगर जीत गए तो लोकतंत्र जिंदाबाद, हार गए तो चुनाव आयोग मुर्दाबाद, यह हार की हताशा है। सारी दुनिया भारत के लोकतंत्र को जानती है, ईवीएम को जानती है, ये तो हार का ठीकरा। देखिए, इसी ईवीएम से अलग अलग राज्यों में, कर्नाटक में कैसे जीत गई कांग्रेस, तेलंगाना में कैसे कांग्रेस जीत गई, हिमाचल में कैसे कांग्रेस जीत गई, ये केवल सड़कों पे निकलेंगे। लेकिन सच वही है कि डेमोक्रेसी नहीं, डायनेस्टी बचाओ, एक परिवार को बचाओ। काउंटर करने की जरूरत ही नहीं है, जनता का कोई भरोसा ही नहीं है। ये केवल सड़कों पर निकलेंगे। लेकिन सच वही है कि डेमोक्रेसी नहीं, डायनेस्टी बचाओ, एक परिवार को बचाओ। अगर मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था तो कोई कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि वो ना आते। सच बात यह कि यूपी में ही कांग्रेस में और सपा में घमासान मची हुई है, अखिलेश नहीं आए, किसी और को भेज दिया।
3: All right, Shivraj Singh Chauhan, they're hitting out at the opposition leaders. The India Bloc met today and they're planning to address rallies and take this issue to the people as they continue their attack against the Chief Election Commissioner. Well, with that, that's it on this edition of NDTV Newsroom. Thanks so much for watching. Goodbye.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: much as possible. We all three gave our all out races, and we knew if she had that lead, Vithya would not never give up. Even though Salwa was coming near, we knew even Vithya was running much faster than her. So finally we won gold, and it's a different, like what individual races we run, it's totally different when the baton comes in our hand. It is a different feeling running for our country. What individual races we perform, more better performance it will come in relay. It's a different feeling from the relay teams.
1: Absolutely, and we saw that given that this is the seventh time India has actually won a gold medal in this particular event, and what a great quartet the four of you are. प्राची, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये चार लोगों की जो टीम है आपकी, अगर इसकी पर्सनालिटी आप डिस्क्राइब करना चाहें तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? कौन काम है, कौन ज्यादा हाइपर है, कौन प्रेशर ज्यादा लेता है, कौन हंसी मजाक ज्यादा करता है, सबकी पर्सनालिटी बताइए जरा.
2: पोमा दीदी है, वो जल्दी हाइपर हो जाती है, उनको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है. वो उनको एक एक सेकंड के लिए चाहिए तो चाहिए, नहीं तो वो उनका दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो रोने लग जाते हैं. फिर विद्या तो काम है, वो बिल्कुल मतलब ऐसे साइलेंट भी रहती है और वो काम भी है. ऐसे कुछ भी हो तो वो बोलती है कि नहीं, अच्छा होगा अच्छा होगा, वो पॉजिटिविटी मतलब ऐसे रहती है. फिर किरण है, किरण थोड़ा सा वो भी साइलेंट ही रहती है ज्यादा. जैसे जैसे हम ट्रेनिंग करते हैं पूरा बहुत ऐसा फोकस जैसे रहती है, पूरा बिल्कुल शांत, बिल्कुल बोलती नहीं है कुछ भी, ऐसे बात भी नहीं करती है, बस वर्कआउट करती है. और ऐसे कभी कभी बात करते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं. उसको ये रहता है कि बस वो ग्राउंड पे जाती है और अपना वर्कआउट करती है और वापस आ जाती है. ऐसे है हमारी टीम, और मैं तो कुछ भी करती होती हूँ.
3: Meanwhile, my colleague Preeti takes up on the 400 meter challenge at the Jawaharlal Nehru Stadium, giving us a first hand look at what it takes to run a full lap of the track. Take a look.
4: Kiran, Poovama, Prachi and Vithya Ramaraj. By now, you must have become familiar with these four names. They are India's golden girls who got us the gold medal in Aichi Nagoya Asian Games in the women's 4x400 meter relay event. Now, what is special about this gold medal is everyone, it seems, is talking about it right now. But if you saw them run on TV, you might have thought that, okay, it's just about 400 meters for an individual athlete, they pass on the baton and then four of them together finish the race, clock a certain time and claim the podium finish if at all they meet the set target. It does look that simple, let me admit, but it is not that simple. So here at NDTV today, we are trying to put together, recreate a 4x400 meter relay for all of you to understand the effort that goes behind winning that gold medal that our girls got for us in Asian Games. I am currently at Delhi's Jawaharlal Nehru Stadium, and the track that you see around me is exactly those 400 meters that our runners will be covering. We've put together a team of four runners. They are, of course, not trained athletes. They come from different walks of life with different aspirations related to their fitness levels, and we are going to test that today. And once the race finishes, we'll try and find out from them what it takes in terms of preparing your body mentally and physically to finish a race like this. So let's understand, how does a middle distance runner prepare themselves, an athlete, an elite athlete? What is the mindset and how do coaches work with them? For that, I have with me Avnish Kumarji, who is the middle distance running coach with Sports Authority of India. He's currently posted here at Jawaharlal Nehru Stadium. But of course, Avnish ji has spent time with all of our leading track runners right now, including Vithya Ramaraj, who's become the talk of the town, sir. First of all, आप क्या कन्वे करना चाहेंगे हमारी गोल्डन गर्ल्स को? क्या जबरदस्त दौड़ी हैं लड़कियां? कह रहे हैं कि वो दौड़ी नहीं है, वो उड़ी है लिटरली ट्रैक पर.
5: जो ये अचीवमेंट है, बहुत ही शानदार अचीवमेंट है, और पूरी कंट्री को जितनी जो खुशी है हम सब लोगों को, और मैं तो एज ए कोच, जो मतलब मेरे को जो अंदर से महसूस हो रहा, मैं शब्दों में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. जो ये अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. सब लोगों को लगता है कि 400 मीटर देखने में तो छोटा है, लेकिन इसके पीछे साल दर साल की मेहनत है. जो उन बच्चों का डेडिकेशन है, जो एथलीट्स है, और उनकी फिटनेस लेवल शानदार है, कमाल की अचीवमेंट है.
4: एंड दिस इज व्हाट वी आर आल्सो ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर. व्हाट लुक्स लाइक जस्ट अ 400 meter lap is not just that. There is

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
3: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Rachel Sagan.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
2: कुछ इससे भी अनोखा।
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स रंग बना रहे।
2: This is a world between orders. Answer.

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: यकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तलाशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थोर मसाला।
5: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस?
2: जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
5: स्मॉल
6: स्मॉल
0: आप पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग। अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: accolade to finish a race like this. So let's understand, how does a middle distance runner prepare themselves, an athlete, an elite athlete? What is the mindset and how do coaches work with them? For that, I have with me Avnish Kumarji, who is the middle distance running coach with Sports Authority of India. He's currently posted here at Jawaharlal Nehru Stadium. But of course, Avnish ji has spent time with all of our leading track runners right now, including Vithya Ramraj, who's become the talk of the town, sir. First of all, आप क्या कन्वे करना चाहेंगे हमारी गोल्डन गर्ल्स को? क्या जबरदस्त दौड़ी हैं लड़कियां? कह रहे हैं कि वो दौड़ी नहीं है, वो उड़ी है लिटरली ट्रैक पर.
1: जो ये अचीवमेंट है, बहुत ही शानदार अचीवमेंट है और पूरी कंट्री को जितनी जो खुशी है हम सब लोगों को. और मैं तो एज ए कोच, जो मतलब मेरे को जो अंदर से महसूस हो रहा, मैं शब्दों में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. जो ये अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. सब लोगों को लगता है कि 400 मीटर देखने में तो छोटा है, लेकिन इसके पीछे साल दर साल की मेहनत है. जो उन बच्चों का डेडिकेशन है, जो एथलीट्स है, और उनकी फिटनेस लेवल शानदार है, कमाल की अचीवमेंट है.
0: अवनीश जी, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 400 मीटर देखने में टीवी पे बड़ा आसान लगता है, बट इज इट द राइट असेसमेंट ऑफ अ 400 मीटर लैप? व्हाट ऑल इज इट रिक्वायर्ड टू रन दैट 400 मीटर्स?
1: 400 मीटर दौड़ने के लिए देखो, उसमें स्टेजेस हैं. सबसे पहले आपको स्टार्ट लेना होता है, उसके बाद में स्टार्ट के बाद में एक्सीलेशन फेस आता है, एक्सीलेशन के बाद में मेंटेनेंस फेस है, मेंटेनेंस के बाद में आपको जब मेंटेनेंस फेस आपका होगा, वहाँ आपको लैक्टिक एसिड के साथ दौड़ना है. और लैक्टिक टॉलरेंस पावर जो होगी उसकी, वो जिसके अंदर ज़्यादा होगी, वही उसको ज़्यादा एफर्ट के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में पेस मेंटेन करते हुए दौड़ पाएगा. और ये सब डिपेंड करता है एक इंडोरेंस लेवल के ऊपर. और इंडोरेंस लेवल कोई 1, 2, 3, 4 दिन में आने वाली चीज़ नहीं है, ये साल दर साल दर साल मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है. तो बहुत मेहनत का काम है 400 मीटर, कोई आसान काम नहीं है. और लड़कियों ने बड़ा शानदार काम किया है.
0: जो हमने देखा कि शुरुआत जो किरण ने हमें दिलाई, उसके बाद पूवमा और प्राची ने अपना रोल अदा किया सेकेंड और थर्ड लेग में, लेकिन विद्या ने फोर्थ और फाइनल लेग में जाके जिस तरह से चाइनीज़ और बहरीन के एथलीट्स को पछाड़ते हुए लीड भी ले ली लास्ट में, और गोल्ड मेडल को मतलब बहुत मुश्किल से नहीं, बड़ी आसानी से फिर हासिल करके दिखाया, विद्या के उस एफर्ट पर आप क्या बोलेंगे? और आखिरी के 100 मीटर की स्प्रिंट, वो कितनी ज़रूरी है एक 400 मीटर लैप के लिए?
1: विद्या की अचीवमेंट को दरअसल मतलब मेरे एज ए कोच, जब मैं उसको टीवी पे देख रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे. जो वो लड़की जो वो काम कर रही थी, कमाल का उसने काम किया है. अच्छा, विद्या के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे साथ हम ब्रिक्स 2023 में हम ब्रिक्स गेम में गए थे, वहाँ पे विद्या हमारी टीम मेंबर थी. और विद्या को उस टाइम पे देख के ही हमें लगा था कि ये लड़की आगे बहुत दूर तक जाने वाली है, ये लड़की है. और जो उसने काम किया है, जो उसने जिस किस्म का उसका एफर्ट था, डू एंड डाई वाली सिचुएशन, वो कहीं भी रेस स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग लाइन तक कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो स्लो डाउन हो रही है. और उसने अपोनेंट के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि वो उसको समझ नहीं आया ये क्या किया. उन टीमों के साथ कंपीट करना और गोल्ड लेके आना, और गोल्ड भी ऐसे लेके आना कि कमाल के, हाँ, देखते रह जाए. बिल्कुल
0: अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू एनडीटीवी. एंड ऑफ कोर्स, एज यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम, एंड दिस इज व्हाट वी आर आल्सो ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर, व्हाट लुक्स लाइक जस्ट अ 400 मीटर लैप इज नॉट जस्ट दैट. देर इज एफर्ट दैट गोज बिहाइंड द सीन्स, लैप आफ्टर लैप, रन आफ्टर रन, ड्रिल आफ्टर ड्रिल, दैट ऑल ऑफ आर एथलीट्स आर पुटिंग टुगेदर टू डिलीवर द गोल्ड दैट वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ टुडे.